हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है, और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई, और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए, और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम उसको बमिकदार मुनासिब उतारते रहते हैं।

और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं, सो हम आसमान से मेह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उन सबको जमा करेगा, वो बड़ा दाना है, खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और वो वक्त काबिले जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं।

उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे भटका दिया है, मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे खास बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है, जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब के वादे की जगह जहन्नम है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से अलग अलग हिस्सा है। जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे।

0: कौन?
1: फिर जब फरिश्ते लूत के घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो नाआशना से लोग हो। वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा ना करना, और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई ना करो।

0: और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो सबसे अल्लाह वाकिफ है। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं बेजान, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है, वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता।
1: ए अल्लाह, ए हमारे रब, ए कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ए अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में इस सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायद आजम की क्यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ए अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ए अल्लाह, अपने रहम व करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घनाओं ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ए अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता।
0: आमीन।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़, GAFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372, 02424601000।

0: मजलिस सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
0: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आयल हार्डवर्ड्स बिजनेस स्कूल के मुख्तलिफ मुल्क से ताल्लुक रखंदड़ शागिर्दन के वफद की मुलाकात, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलों के खिते दुनिया में अमन इस्तेकाम खुशहाली के हथी वठण लाए कल कोशिशों के ख्याल की डेवट कई वही। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर नौजवान की तालीम हुनर सिख्या कारोबारी सलाहतन हकीकतन के बदल तजियाती सोच की अहमियत से जोर दिनों। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर है तेजी से तब्दील थन्दड़ गैर यकीनी सूरत हाल वाली दुनिया में नौजवान के सोशल मीडिया के असर के समझंदे मुस्बत ए बा मकसद किरदार अदा करें घुर्जे।

0: Hadi inelim, hadi inelim.
1: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे पिंड अस्पताल में बाहि लॻण वारे वाक़े जो ज़िमेवार केरु? वफाकी हुकूमत 14 मासूम ॿारनि जे सड़ी फो थियण वारे वाक़े जा ज़िमेवार ज़ाहिर न थियण करे सघिया। साने जी जांच लाइ जोड़ियल कमेटी अॼु शुरूआती रिपोर्ट जमा कराईंदी। अमले खां लिखत में बयान तलब। सीसीटीवी फुटेज बि तहवील में वठी छॾिया। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तार चयो आहे त हिन ज़िंदगीअ जी का बि क़ीमत नाहे। साने जी जांच बाद ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। अॼु शुरूआती रिपोर्ट मिली वेंदी। क़ौमी असेंबली जी सिहत बाबति कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लॻण वारे बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयाननि में तज़ाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटीअ जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो, बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेनि रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया सोबिया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटीअ ते मौजूदु न हुया। जमायत इस्लामी 3 सेप्टेम्बर ते मुल्कगीर हड़ताल जो ऐलान करे छॾियो। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईमुल रहमान चयो आहे त 3 सेप्टेम्बर ते मुल्कगीर हड़ताल थींदी। समूरो कारोबार बंदि रहंदो। पेट्रोलियम लीली ऐं IPs जा नाजाइज़ मुआहिदा ख़तमु कया वञनि। पिम्स में गुलनि जहिड़ा 14 ॿारनि जो मौत करप्शन ऐं नाहेली सबबु थियो आहे। उहे हिकु इस्पताल बि ठीकु तरीक़े सां हलाए नथा सघनि। ॿुधायो वञे त पिम्स इस्पताल में हिफ़ाज़ती उपाउ छो नथा वरिता विया।

0: दफ़ाई मुहिदे 2026 ते सहियूं करे छॾियूं। कोइती दिफ़ा वारे वज़ीर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला सलीम ऐं दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा मोहम्मद आसिफ़ दिफ़ाई मुहिदे ते सहियूं कयूं। नए मुहिदे तहत पाक फ़ौज कोइती हथियारबंद फ़ौज खे मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार फ़राहम कंदी। कोइती दिफ़ा वारे वज़ीर फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात कई। ॿिन्ही अॻवाननि पारां ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं दिफ़ाई सहकार खे वधीक मज़बूत करण वारो अज़म जो वर्जाउ। कोइती वफ़्द पारां ख़िते में अमुन ऐं इस्तक़ाम जे क़याम लाइ पाक फ़ौज जी कोशिशुनि जी साराह।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज, नक कन गलो पुराणो नज़लो निचो मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट ॿुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 03011961898151।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
8: 03013992836।
4: मोहम्मद उमेर गोरी, 03119155724।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग, कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-1800-003।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा।
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुजे दुकान जी बेट हलंदी?
8: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी,
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

त मुंहिंजा मिठा साईं, जेके बि मूंखे हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहियो त तव्हांखे मां ॿुधायां, जीअं मोरो FM 88 जे लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो आहे, जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस। अच्छा, हाणे मैसेज करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो अथव, आसान अथव। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, ए मारो लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां हां 888-1 ते। छा ते मोकिलींदा? 888-1 ते, उन ते लिखी करे मोकिलींदा, मूंखे तव्हांजे मैसेज जो बि इंतज़ारु रहंदो। त मुंहिंजा मिठा चवंदा आहिनि त ज़िंदगी किराए जो घरु आहे। असां हिन दुनिया में अहिड़ी तरह ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं ॼण त हमेशह हिते रहणो हुजे, हालांकि हक़ीक़त उहा न आहे। हक़ीक़त हिन दुनिया में असांजो क़याम रुॻो कुझु ॾींहनि जो आहे। नंढपिण खां वठी जवानी, जवानी खां पोइ पोढ़ाइप, ऐं पोइ वरी हिकु ॾींहुं ख़ामोशीअ सां हिन दुनिया मां मोकिलाए वञिणो आहे। ज़िंदगी जो सफ़र बसि एतिरो ई अथव। पोइ ताक़त, गुरूर, दौलत, ख़ूबसूरती, दुनियावी मसरूफ़ियातूं आख़िर कहिड़े कम जूं आहिनि? जिस्म जंहिं ते अॼु असां नाज़ करे रहिया आहियूं, हिकु ॾींहुं उहो कमज़ोर थी वेंदो, जंहिं माल खे गॾु करणु में असां पंहिंजी सॼी ज़िंदगी लॻाए छॾी आहे न, उहो सभु कुझु हिते ई रहिजी वेंदो। ऐं जिन माण्हुनि ख़ातिर असां पंहिंजे रब खे नाराज़ कयो, उहे बि हिकु ॾींहुं असांखे छॾे हलिया वेंदा। वक़्तु वापसि नथो अची सघे, पर तौबनि जा दरवाज़ा अञा बि खुलियल आहिनि। अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, उनजे करे जेतिरी तौबा थी सघे ओतिरी करणु घुरिजे। अॼु बि मौक़ो तव्हां वटि मौजूदु आहे, असां पंहिंजी ज़िंदगी जो रुख बदिलाए सघूं था। निवास खे मज़बूतीअ सां करियो, क़ुरान पाक खे साउन सां पंहिंजो तालुक़ खे जोड़े छॾियो, जेके वालदेन आहिनि उन्हनि जी क़दुरु करियो, माण्हुनि जा हक़ अदा करियो, दिलनि मां गुरूर तकबुर कढी छॾियो, ऐं अल्लाह ताला सां पंहिंजे तालुक़ वधीक मज़बूत करियो। यादि रखो, हीअ दुनिया मंज़िल नाहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। छा? हीअ दुनिया मंज़िल नाहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। असल कामयाबी उहा नाहे त असां दुनिया में केतिरो कमायो, केतिरी दौलत गॾु कई या केतिरी शोहरत हासिलु कई। असल कामयाबी उहा आहे त जेकॾहिं असां हिन दुनिया मां वञूं, तॾहिं असांजो रब असां सां राज़ी हुजे। हिकु ॾींहुं अहिड़ो ज़रूरु ईंदो जॾहिं न मोबाइल हूंदो, न पैसो हूंदो, न कारोबार हूंदो, न शोहरत हूंदी, न नालो हूंदो, न दोस्त हूंदा, न मिट हूंदा, न माइट हूंदा, केर बि न हूंदो, सिर्फ़ु माण्हू अकेलो हूंदो ऐं असांजा अमल असां सां गॾु हूंदा। तंहिं करे उन खां अॻु जो ज़िंदगी जो ही जेको सफ़र आहे न, उहो ख़तमु थी वञे, पंहिंजे रब सां तालुक़ु मज़बूत करे वठो, पंहिंजे दिलि खे जाॻायो, पंहिंजे अमलनि जो जाइज़ो वठो, ऐं तौबा लाइ देरि न करियो, छो त ख़बर न आहे ज़िंदगी जे हिन सफ़र में असां वटि केतिरो वक़्तु आहे। अलाह ताला असां सभिनी खे किफ़लत मां बेदार करे नेक अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वालदेन जी ख़िदमत करण ऐं माण्हुनि जो हक़ अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान सां ख़ात्मो नसीब फ़रमाए, आमीन। प्रोग्राम ई ॾाढो हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, नाहिद अख़्तर जे आवाज़ में, अचो गॾो गॾु उनखे बि इंजॉय कंदा हलूं।

अलाह ही हला किया करो दुख न किसी को दिया करो इहो ही जो मैसेज है इन ही अमल कजो इंशाल्लाह ताला तवहां पाजी जिंदगी कामयाबी से गुजारिंदा दोस्तों ने कुछ मैसेजेस आए वे भी पाजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं गुड़दूरो भेण का शौकत अली भेण जो पहरो मैसेज पाजे प्रोग्राम में आया है अदा सा गडा है नादर अली भेण अली गुल भेण चवंदा अदा गुलाब सलाम वालेकुम असलम मुझा मिठा आताजन चवंदा शाहिद बाबर जो कलाम बुधायो तो हाजिर मुझा मिठा सही तुम पहो मैसेज अस प्रोग्राम में आया है जरूर तक शाहिद बाबर के आवाज में ही कलाम बुधाइंदुस इं गेरंटी समझो जुल्फकार भेण जो है वो उन गए डेडिकेट करे तो जुल्फकार भेण के जरियाब भेण रियाज अली भेण के वही मेहरबानी मुझे मिठा सही तुम प्रोग्राम में शामिल थे तख कुर्ब लख एहसान तोड़ सारी मोहब्बतू खोड़ सारो प्यार है गोठ हाजी दलेल जरदारी खां सावर खान जरदारी पे प्रोग्राम बुध भी चवे तो सर सलाम तो वालेकुम सलाम जरदारी साहब कड़ा हाल है नवाजा ठीक है तबियत सही है अवाजी अदाजन चवन था ममताज़ ममताज़ लाशहरी जो अज मुझे प्ले लिस्ट में जबरदस्त सॉन्ग है इंतजार कजो जरूर बुधजो उनके ताो इनशाला पसंद अची वो डेडिकेट करे तो भूरो खान लाखो गुलाम सरवर बागाई के अदा भूरो खान लाखो अस पुरानो लिसनर है बेहतरीन गुलाम सरवर बागाई भी इन ही सागे तरीके से असा वही मेहरबानी तवी मुझा मिठा सही तेजे प्रोग्राम में शामिल थे गोठा जी गुलाम अली खास के लिए लग जिंदो मौरिय खां कुर्बान अली खास के लिए बुधे पे अदा कुर्बान कड़ा हाल है तवाजा मैं कुर्बान वजा तो खुश ही तैयार ही तबियत सही थी उम्मीद है अल्लाह तला तो दाँ भी बिल्कुल खैर खैरियत कई होंगी गोठ जियंद अली जुनेद अली है या जियंद अली जरदारी खां गुलाम सरवर बागाई अदा बागाई साहब तोठ जो नालो है न बरए करम ये मैसेज में थोड़ा क्लियर लिखो मुझे अना थोड़ी समझ में न पे हो चवन था असा के जलाल जोगी जो कलाम बुधा हाजिर मुझा मिठा सही जलाल जोगी तक छो न बुधाईंदी डेडिकेट करे तो भूरो खान लाखो आजिज अमानुल्ला विस्तड़ो के मेहरबानी मुझा मिठा मौला तवा सभी के सलामत रखे खुश हो जो आबाद हो जो ये शो तवा जो है असा तवा आयूं जी एफ एम नेटवर्क तवा जो है जे भी असाजा लिसनर्स जेके असा प्यारा प्यारा पुराना लिसनर्स जेके असा नवा लिसनर्स जेके भी असा बुधा उन्हें ही तवसुल सा ही नेटवर्क हली रो है अल्लाह के फजलो करम से।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक बालों मौसर इलाज एंड PRP करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक मेहरापुर, 0569

0: मेहरापुर जी विजिट करियो। वधीक राबते लाइ डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमण, मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम। कॉन्टेक्ट नंबर 03000002724। निसार अहमद मेमण, प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-91-896
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836

त असां सां गॾु आहे पड़ीदन खां अस्मा। अस्मा, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे अव्हांजी? पुराणियूं लिसनर्स आहियो असांजूं ऐं तव्हां मुंहिंजे शो में शामिलु थींदा आहियो। मुंहिंजे तरफ़ खां स्पेशली तव्हांखे हिकु न, ॿ न, टे न, चार न, पंज दफ़ा भलीकार, बल्कि पूरे हफ़्ते जे लाइ भलीकार, सत दफ़ा भलीकार। ऐं अस्मा चवे थी त सर, शो बहुत अच्छा है आपका, महिरबानी, तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे रहिया आहियो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असां सां जुड़ियल रहो। ऐं उमेदु आहे त इन खां वधीक अञा जी एफ एम नेटवर्क ते तव्हांखे शो ॿुधण जे लाइ मिली वेंदा। घोटु उमेद अली दरदारी खां ग़ुलाम सरवर बाघा ई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर सलाम। वालेकुम असलाम, अलाह कंदव, ख़ुशि हूंदव। जी हा, बिल्कुलु अलाह जी महिरबानी आहे, रब करीम जा लख लख अहसान आहिनि, किरोड़े करम आहिनि। मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां ऐं अदा डेडिकेट करे थो सॉन्ग जेको आहे न, उहो अधे भूरे इलाइक़े खे ऐं आजिज़ा माण्हू लाइ विसिड़ो खे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि, तव्हांजो प्यारु आहे। रोड़ी सकर खां नज़ीर अहमद मंगरियो पाण खे ॿुधी रहियो आहे। अदा रोड़ी वारा भाउ, कहिड़ा हालनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे अव्हांजी? ऐं उमेदु आहे त अल्ला ताला तव्हांजे ख़ैरियत कई हूंदी। हफ़ीज़ सोलंगी फ्राम मोरो खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हफ़ीज़, कहिड़ा हाल अथई? ठीकु आहे पुट। ऐं चवे थो अदा सलाम, मां काफ़ी टाइम से एफ एम सुनता हूं, मगर एस एम एस पहली बार कर रहा हूं। मेरे तरफ से आपको और आपके पूरी टीम को और सब अपने सुनने वालों को प्यार भरिया सलाम। जी हाँ अदा, वालेकुम असलाम। तवां असांजा पुराणा लिसनर रहियो, पर मैसेज तव्हां पहिरियों दफ़ो कयो, अदा हाफ़िज़, मैसेज कंदा कयो, शामिलु थींदा कयो। इन सां छा थींदो आहे त हिकु त जेको प्रोग्राम कंदड़ आर जे हूंदो आहे उनखे ख़बर पवंदी आहे त मूंखे कहिड़ा दोस्त किथां खां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं केतिरो असांजे हिन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कनि था। उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त तव्हांजी ख़ुदि जी सुञाणप बि थींदी आहे। तव्हां पंहिंजा जेके बि असांजा लिसनर्स हूंदा आहिनि न, तव्हां इहो न सोचो त सिर्फ़ु असांखे मोरो ॿुधी रहियो आहे, हिन वक़्तु असांखे पूरी सिंध ॿुधी रही आहे, पूरी दुनिया में किथे बि जेको आहे न माण्हू असांखे असांजी वेबसाइट जे ज़रिए ॿुधी रहिया आहिनि। त उन्हनि सभिनी में हफ़ीज़ अहमद सोलंगी फ्राम मोरो उनजो नालो ओसोड़ी पहुचे थो। इन जे करे तव्हां प्रोग्रामनि में शामिलु थींदा कयो। तव्हांखे मुंहिंजे तरफ़ खां 10 दफ़ा भलीकार। ठीकु आहे? ऐं इहे अदा जन चवंदा त असांखे फौजिया सूमर जो कलाम ॿुधायो, त हाज़ुर फौजिया सूमर खे ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। त मुंहिंजा मिठा साईं, मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसासु आहे न जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे। छा मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसासु आहे जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे? जॾहिं कंहिं शख़्स सां सची मुहबत थी वञे थी न, त उनजी ख़ुशी पंहिंजी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे, उनजो ॾुकु पंहिंजो ॾुकु लॻंदो आहे, ऐं उन जी मुस्कुराहट बि पंहिंजी मुस्कुराहट लॻंदी आहे। उनजी मुस्कुराहट ज़िंदगी जी सभ खां वॾी ख़ुशी बणिजी वेंदी आहे। सची मुहबत इंसान खे ख़ुदगर्ज़ीअ खां कढी क़ुर्बानीअ जी राह ते आणे बीहारींदी आहे। कंहिं शख़्स जी मुहबत में पाण सदिको करण जो मतिलबु उहो न आहे त इंसान पंहिंजे वजूद, इज़त या ज़िंदगी खे ख़तमु करे छॾे, न मुंहिंजा जानी। उनजो असुल मतिलबु उहो आहे त पंहिंजे महबूब जे ख़ुशी, इज़त ऐं सुकून जे लाइ पंहिंजी अना ज़िद ज़ाती ख़्वाहिश मां कुझु क़ुर्बान करणु ऐं मोहबत में मान जी जाइ ते असी, न मोहबत में मां जेका असां चवंदा आहियूं उनजी जाइ ते असी अची वञे त रिश्तो वधीक ख़ूबसूरत बणिजी वेंदो आहे। मोहबत में क़ुर्बानी ॾियणु हिकु वॾी ख़ूबी हूंदी आहे, पर उहा क़ुर्बानी ॿिन्ही तरफ़नि खां हुअणु घुरिजे। जेकॾहिं हिकु माण्हू हर वक़्तु ॾिए ऐं ॿियो रुॻो वठंदो रहे, त उहा मोहबत आहिस्ता आहिस्ता हिकु तरफ़ी वाबस्तगी बणिजी वेंदी आहे। सची मोहबत में ख़्यालु, इज़त, वफ़ादारी, क़ुर्बानी ऐं ॿिन्ही तरफ़नि खां हुजणु तमामु घणो ज़रूरी हूंदी आहे। मोहबत इंसान खे मज़बूत बनाए थी, कमज़ोर नथी करे। जेकॾहिं कंहिंजी मोहबत तव्हांखे पंहिंजी ज़ात खां नफ़रत करणु, पंहिंजे ख़्वाबनि खे दफ़न करणु या हर वक़्तु ॾुखु बर्दाश्त करण ते मजबूर करे थी न, त उते मोहबत सां गॾु सोचण जी बि ज़रूरत आहे, छो त सची मोहबत में क़ुर्बानी ज़रूरी हूंदी आहे, पर पाण खे विञाए छॾणु ज़रूरी नाहे हूंदो। रऊफ़ मक्सीअ जो ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत सॉन्ग मुंहिंजे प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे, अचो त उनखे इंजॉय कयूं।

0: अपनी से रिश्ता जोड़ो।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03079215020।
4: अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान के दौरे से आयल हार्डवेयर बिजनेस स्कूल के शागिर्दन की मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलों ने खिते दुनिया में कल क्वेश्चन ते ख्याल की देवट आई एस पी आर मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नौजवान के तालीम हुनर कारोबारी सलाहत हकीकतन से बदल सोच की अहमियत जोर दिनों फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेजी से तब्दील गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवान के सोशल मीडिया ए प्रोपेगेंडा के समझंदे मुसबित बामकसद किरदार अदा करण घुर्जे मुलाकात कंदड़ शागिर्दन में मुख्तलिफ मुल्क से ताल्लुक रखंदड़ शागिर्द शामिल हुआ। इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी वजीर आजम पारा जुड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद कर वरता पोती बारन के वारसन का भी बयान वरता वा जांच कमेटी वजीर आजम के अज छुराती रिपोर्ट पेश कंदी। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड अज थी नून लीग के नामजद वजीर आजम बैरिस्टर सैयद इफ्तिकार गिलानी आजाद कश्मीर के वजीर आजम तौर नामजदगी फार्म जमा कराए छी नून लीग आजाद कश्मीर में वजीर आजम नाले इख्तिलाफ़ बरकरार कुछ मेंबर्स के बैरिस्टर सैयद इफ्तिकार गिलानी से खदशा है।

कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा केस जे अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर रज़ा जे वालिद केस जे जात ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं थींदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थो न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक़ु न आहे। अदालती कमीशन खे रवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिशि कई वेंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां एफ़सी ट्रेनिंग सेंटर शबंद जो दौरो, एंटी राइट विंग जे ख़ुसूसी तरबियती मशक़नि जो जाइज़ो वरितो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अहलकारनि जे पेशवरनि सलाहियतुनि, जदीद तरबियत ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि जी साराह कई। खानपुर वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टकर, हादसे सबबि चार मुसाफ़िर फोत, हिकु ज़ख़्मी। फोतुनि में खानचंद पुटु रामचंद, हाकिम पुटु शेरल ओड, संदसि पुटु रमेश ऐं भाटियो सोणो ओड शामिल। फोतुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मज़दा ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

न्यूज़ एंड कमर्शियल ब्रेक हम तो वो भी तमाम सभी मुझे मिठन प्यारन भारन बेटरों के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती भी भलीकात प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जी एम ओ एफ एम एच ए लाइव स्टूडियो में ऑन ईयर कर पे वे जैमी मां तमाजो पांजो आर जे गुलाब खान भेण तमा सा गड आया न सिर्फ जी एम ओ एफ एम एच ए जे असा प्यारा भार बुझी रहा असा पर असा जी एफ एम नेटवर्क के समूर स्टेशन वारा जी असा दिलबर दिलबर लिसनर्स प्यारा प्यारा लिसनर्स मिठा मिठा लिसनर्स समूर इन वक्त असाजे इन प्रोग्राम के बुधी रहा मीरपुर खास वारा अलाई कि हलिया वे खबर ना अज मीरपुर खास वारा जो को मैसेज अजा थोड़ी मुख्य न रिसीव थो है मातली में भी असा मैसेजेस इंदा हुआ वो यार भी असो अलाई कि हलो वो है सकरन वारा भी घुमन बाकी मोरो सखर वारा पान मल्हाए रहा आहिनि निभाए रहा आहिनि बाक़ी ॾिसूं था त असांजे जेके ॿिया लिसनर्स आहिनि उहे किथे आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हांखे मां इहो मैसेज करण जो तरीक़ेकार ॿुधायां ख़ासि तौर ते उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके असांखे हिन वक़्तु ताज़ो ई ॿुधी रहिया आहिनि या उहे असांजा भाइर भेनरूं जेके हिन वक़्तु असांखे दौरान सफ़र ॿुधी रहिया आहिनि त उहे ज़रूरु मूंखे मैसेज करे ॿुधाइनि त केॾां खां उन्हनि जो सफ़र जारी वसारी आहे ऐं दौरान सफ़र हू पंहिंजे गाॾीअ में कार में बस में जिथे भी ॿुधी रहिया आहिनि त उहे छा ॿुधणु पसंदि कनि था यकीन कयो तव्हांजो मैसेज मूंखे रिसीव थींदो ऐं तव्हांखे मां उहो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदुसि जेको तव्हां दौरान सफ़र ॿुधाईंदा भली पोइ तव्हां पंहिंजे गाॾीअ जो आवाज़ु फुल करे छॾिजो ऐं न सिर्फ़ु तव्हां बल्कि सभिनी खे उहो वी आई पी सॉन्ग ॿुधाइजो सॉन्ग जी जेका तव्हां फरमाइश कयो उहो सिर्फ़ु पाकिस्तानी हुजे इंडियन सॉन्ग को बि न हुजे छो जो इंडियन सॉन्ग नॉट अलाउड आहे ऐं पाकिस्तानी कहिड़े सॉन्ग जी तव्हां फरमाइश करे सघो था जेको तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं त हाणे तव्हां कहिड़े तरीक़े सां मूंखां इहा फरमाइश करे सघंदव पंहिंजी मोबाइल फ़ोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञी एम आर ओ लिखो स्पेस कयो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888 1 ते

प्रोग्राम शामिल कंदासीं असांजे प्यारे भाउ जी फरमाइश ते जलाल जुगी जुगड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे उन जे तरफ़ हलंदासीं ऐं असांजो मूंखे अदा जन मैसेज कयो हुयो की त असांखे जलाल जोगी ॿुधायो त जलाल जोगी उन्हनि जे लाइ आहे न सिर्फ़ु उन्हनि जे लाइ बल्कि जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उन सभिनि जे नाओ आहे।

जलाल जोगी जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजी सुंदर समातूं। अच्छा ही जलाल जोगी जी जेका फरमाइश मूंखे कई हुई न अदा उमेद अली ज़रदारी जी ॻोठ खां गुलाम सरवर बाघाई कई हुई त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हांजे नां ही स्पेशल सॉन्ग मां करे छॾियो आहे, वॾी महिरबानी आहे तव्हांजी। त हिन वक़्तु प्रोग्राम में कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि उहे शामिलु कंदा था हलूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो वेरी नाइस है। अच्छा ठीकु आहे, महिरबानी मुंहिंजा भाउ, तव्हांखे मुंहिंजो शो पसंदि अचे पियो, हुनजे लाइ लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा। ऐं असां सां गॾु आहे केरु, ख़बर आहे, मोहम्मद तैयब थेबो ॻोठ जो नालो आहे, ऐं उतां खां अदा हबीबुला थेबो असां सां गॾु आहे। अदा हबीबुला कीअं आहियो? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी? तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चवां थो। थैंक यू वेरी मच ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां। ग़ुलाम सरवर बाघाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा ग़ुलाम सरवर तव्हांजे पसंदि जो कलाम ॾिसो मां प्ले करे छॾियो आहे। थैंक यू वेरी मच, ख़ुशि थी विया हूंदा। ऐं उमेदु आहे त तव्हांखे इहो सॉन्ग पसंदि आयो हूंदो। चवे थो अलाह कंदो ख़ुशि हूंदा। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, इन ई दुआऊं कंदा रहो। मूंखे दुनिया में अगरि सभ खां वधीक जंहिं शइ ज़रूरत आहे उहा आहे दुआउनि जी ज़रूरत, त तव्हां मूंखे अहिड़े तरीक़े सां दुआ कंदा रहो। महिरबानियूं आहिनि तव्हांजूं। ऐं डेडिकेट करे पियो सांवल खान ज़रदारी ऐं भूरो खान लाको खे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा, मौला तव्हांखे आवाज़ रखे ख़ुशि हुजो। पनो आकिल खां सैयद इमदाद अली शाह पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अदा जन जो ही शायदि ॿियो मैसेज आहे, चए थो आपका प्रोग्राम नाइस है। मुमताज़ मौलाई का मुमताज़ मौलाई जो कलाम असांखे ॿुधायो, जेको डेडिकेट करे थो ताहिर लुणई रियाज जिस कहाणीअ खे। अच्छा अदा अब्दुल हफ़ीज़ मोरो खां असांखे मैसेज कयो हुयो, ऐं अदा जन फरमाइश कई त मूंखे तव्हां न ॿुधायो फौजा सुमरे जे आवाज़ में कलाम। दादा पहिरियों दफ़ो तव्हां मैसेज कयो, इन जे करे दिलि चयो तव्हांखे कलाम ॿुधायो। ऐं हालांकि फौजा सुमरो जो आवाज़ ॾाढो प्यारो आहे, न सिर्फ़ु तव्हांजी पसंदि आहे पर इलाही सिंध में माण्हू उनखे तमामु घणो पसंदि कंदा आहिनि, ऐं हिन कलाम खे बि अहिड़े तरीक़े सां पसंदि कंदा ऐं इंजॉय कंदा।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

तॾहिं दिलि कंहिं हिकु शख़्स खे यादि कंदे हज़ारे सवाल करे थी, छा हू बि मूंखे यादि करे थो, छा हुन खे बि मुंहिंजी ग़ैर मौजूदगी महसूसु थिए थी, छा असांजो नसीबु कॾहिं हिकु रस्ते ते मिलंदो। पर सुबुह थी ॾेई ज़िंदगी वरी हक़ीक़तुनि जो चहिरो ई खणी साम्हूं आणे छॾे थी। मोबाइल में महबूब जा पैगाम अणपढ़ियल रहिजी वञनि था, छो त कमु त कमु हूंदो आहे न, ऐं दिलि ॻाल्हाइणु चाहे थी पर वक़्तु इजाज़त नथो ॾिए। मुलाक़ात जी ख़्वाहिश हूंदी आहे पर घर जूं ज़रूरतूं पूरियूं करणियूं पवंदियूं आहिनि, हुन जे करे मुलाक़ातूं नाहिनि थी सघंदियूं। कॾहिं कॾहिं इंसान खे सभ खां वधीक ॾुखु उन ॻाल्हि जो थींदो अथव त हू जंहिं शख़्स सां मुहबत करे थो न उन लाइ वक़्तु ई नथो कढी सघे, उन करे त मुहबत घटिजी वञे थी। पर उन करे त ज़िंदगीअ जूं ज़िमेवारियूं मुहबत खां बि वधीक सख़्तु सुवाल पुछंदियूं आहिनि। मुहबत इंसान खे चवंदी आहे मूं लाइ वक़्तु कढ, ज़िमेवारियूं चवंदियूं आहिनि असांखे तुंहिंजी ज़रूरत आहे। इंसान ॿिन्ही जे विच में बि ख़ामोश तमाशाई बणिजी वेंदो आहे। शायदि ज़िंदगी जो असल इम्तिहान उहो ई अथव मुंहिंजा साईं। इंसान पंहिंजे दिलि खे बि संभाले ऐं पंहिंजा फ़र्ज़ बि निभाए ऐं इश्क खे विसारणु ज़रूरी बि न आहे, पर ज़िमेवारनि खे मुंहुं मोड़ण बि मुहबत जो नालो न आहे। सची मुहबत उहो आहे जेका इंसान खे वधीक ज़िमेवार, वधीक साबर ऐं वधीक मज़बूत बणाए। कॾहिं महबूब खे वक़्तु ॾियण खां वधीक अहम वाशे हूंदी आहे त उनजे मुस्तक़बिल लाइ कुझु करणु, कॾहिं गॾु विहण खां वधीक क़ीमती उहो हूंदो आहे त परे रही बि कंहिंजे लाइ महिनत कई वञे। हर मुहबत जो इज़ार लफ़्ज़नि सां नथो थिएव, कुझु मुहबतूं ख़ामोशीअ सां महिनत इंतज़ार ऐं क़ुर्बानी में लिकल हूंदियूं अथव। ज़िंदगीअ में अहिड़ा लम्हा बि ईंदा आहिनि, छा ज़िंदगीअ में अहिड़ा लम्हा बि ईंदा आहिनि जॾहिं दिलि रोईंदी आहे, इंसान मुस्कराए दुनिया अॻियां बीह पवंदो आहे, अंदरि इश्क जो तूफ़ान हूंदो आहे पर ॿाहिरि ज़िमेवारनि जो सुकून ॾेखारणो पवंदो आहे। शायदि उन खे ई वॾो थियणु चइबो आहे। दिलि में कंहिंजी यादि रखणु, अखियुनि में कंहिंजे इंतज़ारु रखणु, पर हथनि सां पंहिंजूं ज़िमेवारियुनि खे निभाइणु, छो त इश्क जा सूर इंसान खे अंदरि खां टोड़े छॾींदा आहिनि, पर दुनिया जूं ज़िमेवारियूं खे ॿीहर बीहणु सेखारे छॾींदियूं आहिनि। तॾहिं त हिन शाइर बि इएं ई ज़ाहिरु कयो आहे।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ऐं चवे थो प्रोग्राम लाजवाब आहे ऐं सभिनी लिसनर्स खे सलाम चवे पियो। अहमद मुगल जो कलाम जी फरमाइश कई अथसि, अबा रशीद हाणे ईअं आहे शर साहब, रशीद शर साहब वेठो तूं अहिड़े इलाइक़े में जो ॻाल्हि न पुछ। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त तोखे नेक्स्ट जेको प्रोग्राम ईंदो न जुमे वारो, उन में तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो मां कलाम इहो ज़रूरु ॿुधाईंदुसि, छो जो हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। अहमद मुगल ॾाढो भलो रागी आहे, न सिर्फ़ु अव्हांखे बल्कि मूंखे बि ॾाढो पसंदि हूंदो आहे। महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, हक़ मौजूद अदा कैसे हो अदा, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। अब्दुल क़दीर ख़ासकेली ॻोठु हाजी ग़ुलाम अहमद ख़ासकेली कंपनी प्रोग्राम ॿुधे पियो, नज़दीक कुनरी ऐं तालको, अच्छा नज़दीक कंटड़ी तालको मोरो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे कलाम जी अदा जन फ़रमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं हाज़ुर, तव्हांखे बि ॿुधाईंदासीं पर मथे प्रोग्राम ई हिन प्रोग्राम में तव्हांखे इंतज़ारु करिणो पवंदो। त प्रोग्राम जो वक़्तु पुछी पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरीं हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो, दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो। जुमे जो भलारो ॾियारो आहे उन ॾींहुं, ऐं असांखे पंहिंजी दुआउनि में ज़रूरु यादि कजो, निमाज़ जी पाबंदी कजो ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे हरगिज़ न विसारिजो। पंहिंजनि नंढनि मासूम ॿारनि खे दीनी दुनिया जी तालीम ज़रूरु ॾियो। जुमे जो ॾींहुं दुरूद पाक कसरत सां पढ़जो ई असांखे दुआनि में यादि कजो। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त, अलह वाही अलह निगहबान। वींदे वींदे ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो थो वञा, उनखे बि इंजॉय कजो।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी। वजीर आजम पारा जुड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेंजा बयान कलम बंद करे वरता। पोती बारन के वारसन का भी बयान वरता व्या। जांच कमेटी वजीर आजम कच शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वजीर आजम नजीर तरड़ चया है जांच कमेटी अज शाम ताई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट सतन दिन में सामू ही जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी।
2: सेनेट ए कौमी असेंबली के इजलास में भी पिम्स आने जो जिक्र। कौमी असेंबली में गालाइंदे पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ चया है पिम्स आने अलमनाक है जिम्मेवार खिलाफ एक्शन थे घुर्जे। सेनेट में भी कार्रवाई मुअत्तल कर पिम्स आने ते बहस कयो वयो। सेनेटर डॉक्टर सादे अब्बासी चया है पिम्स डायरेक्टर के मुकरर की मुखालिफत कई हुई कोई भी केस लगाय वो वजीर आजम सेक्रेटरी के मुअत्तल कर पिम्स डायरेक्टर खिलाफ कार्रवाई कर न सको। वजीर आजम जिम्मेवारी कबूल करें।

0: महदूद न कयो। सेनेट में गलाईंदे सेहत वारे वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त मुल्क में रोज़ानी 1300 ॿार मरी रहिया आहिनि जिन जूं हयातियूं बि बचाए सघजनि थियूं। निज़ाम सिड़ी ऐं गरी वियो आहे। वज़ारतुनि लाइ कपड़नि खे ख़राब न कंदासीं। सालियानो 4 लख ॿार मरी रहिया आहिनि, असांखे हल कढणु ॾियो।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां सऊदीअ जे माहौलियात बाबति वज़ीर इंजीनियर अब्दुलरहमान बिन अब्दुल मोहसिन जी मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि जे सहकार ते ॻाल्हियूं। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाक सऊदी ऐं तुर्की में थियल मके मुआदे बाद टेई मुल्क वधीक वेझो आया आहिनि। मुआदे सां ख़िते में बि अमुन एताद जो पैगाम वियो आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब स्टेट जग भाईवार आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तिसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइणु घुर्जे। वज़ीर आज़म ज़रई माहिरनि जो वफ़द बि सऊदी मोकिलण जो ऐलान कयो।
0: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान जे दौरे ते आयल हार्ट बिजनेस स्कूल जे शागिर्दनि जी मुलाकात। पाकिस्तान जे सिक्योरिटी मामलनि खिते ऐं दुनिया में अमुन इस्तेहकाम ऐं खु़शहालीअ खे हथी वठण लाइ कयल कोशिशुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नौजवाननि जे तालीम, हुनर, कारोबारी सलाहियतुनि ऐं हक़ीक़तनि ते ॿधल सोच जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त तेज़ीअ सां तब्दील थींदड़ ऐं गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवान मीडिया प्रोपेगेंडा जे असरनि खे समझंदे मुसबित ऐं बामक़सद किरदार अदा करणु घुर्जे। मुलाक़ात कंदड़ शागिर्दनि में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां तालुक रखंदड़ शागिर्द शामिल रहिया।
1: आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड अॼु थींदी। नून लीग जे नामज़द वज़ीर आज़म बैरिस्टर सैयद इफ़्तिख़ार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौरु नामज़दगी फॉर्म जमा कराए छॾियो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म जे नाले ते इख़्तिलाफ़ बरक़रार। कुझु मेंबर्स खे बैरिस्टर सैयद इफ़्तिख़ार गिलानीअ ते ख़दशा आहिनि।
0: कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा खे सॼी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर मुर्तज़ा जे वालिद खे सॼी जांच ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं ईंदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थी न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक़ु न आहे। अदालत कमीशन खे रवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सुवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहराबपुर, 03003385569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती कमीशन जांच शुरू कर छी। मीर रजा जहा घर भाती है वकील जबरान नासिर कमीशन आरो पेश। मीर रजा के वालिद केस की जांच से बेअतमादी जाहिर कर छी। केस की जांच कदड़ कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल जो कुछ सभी के सामू थ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन कर सके तो न वही वो वजीर अवां की दरख्वास्त जो कमीशन से ताल्लुक ना है। अदालती कमीशन के रिवायती अंदाज में न हलाइंदी कमीशन अवां के समूरन सवाल जवाब घुरण की कोशिश कई वेंदी।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरा पर राबते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर

0: जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म, लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहराब पर, 03003385699।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह दहें खां शाम पंजे वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिकर छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
4: अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल सानह की जांच जारी। वजीर आजम पारा जॉइंट कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलम बंद करे वरता। फोती बारन के वारसन का भी बयान वरता वया। जांच कमेटी वजीर आजम के शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वजीर आजम नजीर तारण है तो जांच कमेटी अज शाम ताई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 70 डीह में सामू ईन्दी। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई भी थन्दी। वजीर आजम की सदारत हेठ FBR में सुधारन बाबत हफ्तेवार इजलास। शहबाज शरीफ पारा टैक्स निजाम में सुधारन वारो कम तय थियल मुदत में मुकम्मिल करण की हिदायत। टैक्स चोरी स्मगलिंग ए गैर कानूनी कमन में मुलविस मानून खिलाफ कार्रवाई तेज करण जो हुकुम। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुधारन जो टीह दुर का ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत कन्दे है तो मुल्की तरक्की लाए टैक्स वाले निजाम में सुधारा जरूरी आन। सुधारन वारो कम भी तय थियल मुदत में मुकम्मिल किया वे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड सैद आसिफ मुनीर सां पाकिस्तान के दौरे ते आयल। हार्डवर्क बिजनेस स्कूल के शागिर्दन की मुलाकात पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलन खिते दुनिया में अमून इस्तेकाम खुशहाली तैयारी वठण लाए कयल कोशिशन के ख्याल की डे वट। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर नौजवान की तालीम हुनर कारोबारी सलाहतन ए हकीकतन के बदल सोच की अहमियत ते जोर दिनों। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तेजी से तब्दील थन्दड़ गैर यकीनी सूरतयाल में नौजवान के सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा के असर के समझंदे मुस्बत ए बा मकसद किरदार अदा कर घुर्ज। मुलाकात कदड़ शागिर्दन में मुख्तलिफ मुल्क से ताल्लुक रखंदड़ शागिर्द शामिल हुआ। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड अज थी। नून लीग के नामजद वजीर आजम बैरिस्टर सैद इफ्तखार गिलानी आजाद कश्मीर के वजीर आजम तौर नामजदगी फार्म जमा कराए छो। नून लीग आजाद कश्मीर में वजीर आजम के नाले के खिलाफ बरकरार। कुछ मेंबर्स के बैरिस्टर सैद इफ्तखार गिलानी से खदशा। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती कमीशन जांच शुरू कर छी। मीर रजा जहा घर भाती ए वकील जबरान नासिर कमीशन आरो पेश। मीर रजा के वालिद केस की जांच से बेतमादी जाहिर कर छी। केस की जांच कदर कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सयाल है तो जो कुछ सभी के सामू इंक्वायरी ए इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन कर सके तो न वरी वो वजीर। अवां की दरख्वास्त जो कमीशन से ताल्लुक ना है। अदालती कमीशन के रिवायती अंदाज में न हलाइंदी। कमीशन अवां के समूरन सवाल जवाब गोल्ण की कोशिश कई वी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सौदे की माहौलियात बाबत वजीर इंजीनियर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मोहसिन की मुलाकात। बिन तरफन लागापन समेत मुख्तलिफ शोबन में सहकार के गाल। शहबाज शरीफ चवा तो पाक सऊदी ए तुर्किया में थियल मक्के मुहिदे बाद जैनी मुल्क वेझो आया। मुहिदे से खिते में भी अमून एताद जो पैगाम वो है। पाकिस्तान ए सऊदी अरब स्टेट भाईवार बिन्हीं मुल्कन के हाँ इक्तसादी ए जरिए शोबे में सहकार बढ़ाने घुर्जे। वजीर आजम जरे माहर जो वक्त में सऊदी मोकलण जो ऐलान कर। वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी पारा FCG ट्रेनिंग सेंटर शबकदर जो दौरो। एंटी राइटरिंग के खुशी तरबियती मशकन जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी पारा एहलकारन के पेशावरानी सलाहतन जदीद तरबियत ए ऑपरेशनल तैयारियों की सारा। मोहसिन नकवी है तो पुरमन इख्तियार सभी जो हक है। कानून हथ में खण की इजाजत न डनी वी। रूस कें भी नेटो मेंबर ते हमलो न कंदो। CIA सरबराह के मॉस्को के दौरे जो मकसद भी खास पैगाम मोकलण न हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प है तो जान छह महीनों या साल में पैंजे रूसी हमलुन से मुलाकात कंदो है। संदस मॉस्को वे दौरे जो मकसद खास पैगाम पहुंचाण न हो। आपने हर मुस बाबत रूस जो रवैयो मुस्बत हो। ईरान वट फौजन के पघार डेण जेतरा भी पैसा नाहन रहा। आपने हर मुस के भी बारूदी सुरंगन का साफ कर छो है। ईरान ए ओमान विच में आबन हरमुज में वक्ती रस्ो खोलन के इतफाक वो है। राहदारी जो हिस्सो ईरानी ए हिस्सो ओमान पानी में होंद में तरफ मुल्क गडियल तौर से जहाजन के अचवन जो इंतजाम दिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई है आबन हरमुज के लंग जो वाजे तौर से तय कर छो है। अमेरिका ईरानी शर्त मनिया आबन हरमुज बीहर मुकम्मिल तौर से खुली वो। परदेही वजीर अब्बास इराकी है तो गाल की बहाली लाए अमेरिका के एतमाद बहाल करो पव। नायब वजीर आजम इसाक डार जो तुर्किया के परदेही वजीर हकान से राबो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरतयाल से गाल परही खाते मौजूद बिन्हीं अगवा चार मुल्की परही वजीर के इजलास बाबत भी तफसीली गाल बोल कई खिते की सूरतयाल से भी ख्याल की वट कई गई। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की मुलाकात सिंध के गैस ए तवानाई वे मामलों से गाल कई हुई। वरे वजीर पारा गैस फीड्स सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो मुराद अली शाह सिंध मुल्क में सब का वधीक गैस पैदा कदड़ सूबो है। सिंध के आइनी हकन जो एहतराम कर वे वफाकी वजीर अली परवेज मलिक सिंध हुकूमत के गैस वसील बाबत मौकफ ए तजवीजन के अहमियत दियं था मसला जल्द हल क्या वा। ट्रेड सब रजिस्ट्रार पारा सतह ग्रेड में प्रमोशन न वठण वे मामले जो वे वजीर नोटिस वरतो। सब रजिस्ट्रार पारा तरक्यू न मिलने वठण ता तफसील तलब सीनियर मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वे वजीर के नोटिस सब रजिस्ट्रार की तरक्की न वठण वे आर्डर से अमल रोके छो। मुराद अली शाह है केतर ही पोस्टू खाली हैं केतर ही सब रजिस्ट्रार प्रमोशन वठण का इनकार तफसील रिपोर्ट पेश कई वे। ट्रेड सब रजिस्ट्रार तरक्की न वठण की लिखित में दरख्वास्तू कई हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण वफाकी हुकूमत का सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के तरजीह दियण जो मुतालबो कर छो। शर्जील इनाम मेमण है कराची का रोड़ी रेलवे ट्रैक वो मनसूबो अहम है। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के भी अहमियत दिनी वे सिंध जो आवाम डिघे अरसे सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जो इंतजार कर रो है। वफाकी हुकूमत रिथा से कम के टी लाइन सूबे के डे डीआईजी लाड़कानो नासिर आफ्ताब पठान बदली डीआईजी सखर मुकर्रर शिराज नजीर अब्बासी के डीआईजी लाड़कानो लगाया वो नोटिफिकेशन जारी।

0: मुंहिंजा चार पुट लुड़ी विया आहिनि, हिकिड़ो बि असां पाण लधो आहे महिल ताईं कारेस टुटुम न आई आहे, न को इहो आयो आहे पंहिंजो टीम आई आहे महिल ताईं हिन महिल ताईं राति खां वठी असांजा पंहिंजा दोस्त संग सां मिट माइट लथा पिया आहिनि। को टीम वारो न आहे,
1: चार ॿार असांजा क्रिया आहिनि, उन में असां हिकिड़ो पंहिंजी मदद पाण करे असां कढियो आहे, बाक़ी टे ॿार असांजा अञा ताईं न लथा आहिनि।
2: कोट जी भरिसां लोडर रक्षा वाह में किरण सबबु बुॾी वियल टिन ॿारनि जो केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूद पतो न पियो। वारसनि जो ॻोल्हा में मदद न थियण ख़िलाफ़ पुराणी क़ौमी शाहराह ते धरणो। मुज़ाहिरीन मूजिब राति देर सां ॿार मीर वाह केनाल में किरिया हुआ, इंतज़ामिया का बि मदद न करे रही आहे। लाड़काणे शहर जा खुलियल गटर मौत जो खूह भरिजी विया। मासूम नींगर खुलियल गटर में किरी फोत। शहर जे यासीन चौक वारे इलाइक़े में चार सालनि जो नींगर साजिद अली पुट अल्ताफ चांडियो खुलियल गटर में किरी पियो। इलाइक़े वासियुनि गटर मां कढी नींगर खे अस्पताल पहुचायो। डॉक्टर्स नींगर साजिद जे फोत थियण जी तसदीक कई। खानपुर वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टकर हादसे सबब चार मुसाफ़िर फोत, हिकु ज़ख़्मी थियो। फोतिन में खानचंद पुट रामचंद, हाकिम पुट शेरल ओड, संदस पुट रमेश ऐं भाइटो सोनो ओड शामिल। फोतिन जा लाश ऐं ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मज़दा ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। टंडो आदम वेझो चार ॾींहं अॻु ज़रई ज़मीन जे तकरार तां मुबैना तौर क़तल थियल औरत जो केस दाख़िल न थियण ख़िलाफ़ वारसनि जो एहतजाज। ॻोठ मलुक मलुकाणी जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन मौजूद ज़रई ज़मीन जे तकरार तां क़तल कयो वियो। पुलिस केस दाख़िल करण खां इनकारी आहे। इंसाफ़ कयो वञे। जो फसल में माल दाखिल थियण तां बासर शख़्स जो रिढू ऐं धनार औरत ते तशद्दुद। मुबैना तशद्दुद में हिकु रिढ जी अख ज़ाया थी वई। वाके जी इतलाह ते पुलिस मुबैना तौर मुलविस बासर शख़्स खे हिरासत में वठी छॾियो। अखियुनि ॾिठे शाहिदनि पारां बासर शख़्स ते रिढू ऐं औरत धनार ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम, बासर इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। नेपाल में आयल बोर जे नतीजे में फोतिन जो अंग वधी 475 थी वियो। 500 सियान समेत 900 ॼणा बदस्तूर गुम। 900 ॼणनि खे बचाइण जी दावा। नेपाली हुकूमत मूजिब ॿोट सबब तबाह थियल घरनि जो मलबो हटाइण जो सिलसिलो जारी आहे। चीनी सरकारी मीडिया मूजिब तिब्बत मां 555 सियान खे महफ़ूज़ हंधि मुंतकिल कयो वियो आहे।

0: सिंध समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ हिंदू बिरादरी अज राखी जो मजहबी ॾिण आहे। भाउ ऐं भेण जे रिश्ते खे वधीक मज़बूत बणाइण लाइ भेनर भाइरनि खे राखियूं ॿधी रहियूं आहिनि। भाइर बि भेनरुनि जे तहफ़ुज़ वारे वचन खे वरजाए रहिया आहिनि। राखीअ जो ॾिण हिंदू धर्म जे अहम ॾिणनि मां हिकु आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असां वट जगह जो ॾियारियूं।

0: क्लैम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेट।

0: केस जे अदालती कमीशन जांच शुरू करे छी। मीर रज़ा जा घर भाती है वकील जबरान नासिर कमीशन आरो पेश। मीर रज़ा जे वालिद केस की जांच से बेएतमादी जाहिर करे छी। केस की जांच कंदड़ कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सयाल है जो कुछ थी सभी के सामू थो इंक्वायरी ए इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सके तो न वो वजीर। अवां की दरख्वास्त जो कमीशन से ताल्लुक ना है। अदालती कमीशन के रवायती अंदाज में न हलाइंदासी। कमीशन अवां के समूरन सवाल का जवाब गोल्हण की कोशिश कई वेंदी।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ जो नेपाली वजीर से फोन से राबतो। बोर्ड में तबाह थियल माली नुकसान से अफसोस हमदर्दी जो इजहार। मुश्किल वक्त में इंसानी बुनियादन से मदद की आश। शहबाज शरीफ चाहिए पाकिस्तानी अवाम हुकूमत मुश्किल वक्त में नेपाली अवाम हुकूमत से हमदर्दी इजहार करे थी। नेपाली वजीर आजम शहबाज शरीफ या थोरा मनीदे कुदरती आफत वक्त मदद पाकिस्तान जहा थोरायत आया।
0: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा एफ सी जी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर जो दौरो। एंटी राइडिंग के खसूसी तरबती मशकन जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी पारा एहलकारन के पेशवरानी सलाहियतन जदीद तरबियत ए ऑपरेशनल तैयारियों की साराह। मोहसिन नकवी है तो पुरअमन एहतजाज सभी हक है। कानून हथ में खड़ने की इजाजत न दी वी।
1: रूस कें भी नेटो मेंबर से हमलो न कंदो। सीआईए मेंबर जो मॉस्को के दौरे जो मकसद भी खास पैगाम मोकल न हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो जॉन रेटकिन छह महीनन या साल में पांजे रूसी अमनस्व से मुलाकात कंदो। संदस मॉस्को वारे दौरे जो मकसद खास पैगाम पहुंचाण न हो। आबन अरुस बाबत रूस जो रवैयो मुसबित हो। ईरान वट फौजन के पगार दियण जितरा पैसा ना रहा। आबन अरुस के भी बारूदी सरंगन का साफ कर छो है।
0: ईरान ए ओमान विच में आबन हरमुज में वक्ती रस्तो खोलण ते इतफाक थी वयो आहे। राहदारी जो हिकड़ो हिस्सो ईरानी ऐं बियो हिस्सो ओमानी पाणी मां हूंदो। बे मुल्क गॾियल तौर ते जहाज़नि जे अचवण जो इंतज़ाम ॾिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त आबन हरमुज़ जे लम्हो वाज़े तौर ते तइन करे छॾियो आहे। अमेरिका ईरानी शर्त मञिया त आबन हरमुज़ ॿीहर मुकमल तौर ते खुली वेंदो। पर ॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ अमेरिका खे इतमाद बहाल कंदो।
1: नायब वजीर आजम इसाक डार जो तुर्किया के परदेही वजीर खाकान फिदान से राबतो। बितरफन लागापन समेत खिते के सूरत हाल से गालियों। परदेही खाते मूजिब बिन्हीं अगवाणन चार मुल्की परदेही वजीर के इजलास बाबत भी तफसीली गाल बोल कई। खिते के सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही।
0: वरे वजीर सैद मुराद अली शाह से वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की मुलाकात। सिंध के गैस ए तवानाई वारे मामलों से गालू कई हुई। वरे वजीर चवा है गैस फील्ड सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो। सैद मुराद अली शाह चवा है सिंध मुल्क में सब का गैस पैदा कदड़ सूबो है। सिंध के आइनी हकन जो एतराम किया वे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक चवा है सिंध हुकूमत के गैस वसीलन बाबत मौकफ ए तजवीजन के अहमियत दूं था। मसला जल्द हल क्या वा।
1: सबर जो स्टार्स पारा सत्रहें ग्रेड में प्रमोशन न मिलने वाले मामले जो वडे वजीर नोटिस वरतो। सबर जो स्टार पारा तरक्यू न वठण जा तफसील तलब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वडे वजीर के नोटिस बाद सब रजिस्ट्रार की तरक्की न वठण वाले आर्डर से अमल रोके छो। मुराद अली शाह चाहिए तो केतरी पोस्टू खाली आन केतर सब रजिस्ट्रार प्रमोशन वठण का इनकार किया। तफसीली रिपोर्ट पेश कई वे ट्रेड सब रजिस्ट्रार तरक्की न वठण की लिखत में दरख्वास्त कई हुई।
0: सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन वफाकी हुकूमत का सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के तरजीह दियण जो मुतालबो कर छो। शर्जिल इनाम मेमन है तो कराची का रोड़ी रेलवे ट्रेक वो मनसूबो अहम है। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के अहमियत दिनी वे। सिंध जो आवाम डिगे अरसे का सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जो इंतजार कर रो है। वफाकी हुकूमत रिथा से कम की टाइन लाइन सूबे के दें।

आफ्ता पठान बदली डीआईजी सखर मुकरर शिराज नज़ीर अब्बासी के डीआईजी लाड़कणो लगाए वयो। नोटिफिकेशन जारी। अदील चांडियो एसएसपी ठट्टो मुकरर, एसएसपी साजिद अमीर सदू के प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची मुकरर कयो वयो।

0: मुंहिंजा चार पुट लुड़ी आहिनि, हिकिड़ो बि असां पाण लधो आहिनि माल ताईं कारेस टूटूं न आई आहे, न को इहो आयो आहे पंहिंजो का टीम आया आहिनि माल ताणी हिन माल ताईं राति खां वठी असांजा पंहिंजा दोस्त संग असां मिट माइट लथा पिया आहिनि बाह में को टीम वारो न आहे।
1: चार ॿार असांजा क्रिया आहिनि, उन में असां हिकिड़ो पंहिंजी मदद पाण करे असां कढियो आहे, बाक़ी टे ॿार असांजा अञा ताईं न लथा आहिनि।
2: कोट जी भरिसां लोडर रक्षा वाह में किरण सबबु उॾी वियल टिनि ॿारनि जो केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूद पतो न पियो। वारसनि जो ॻोल्हा में मदद न थियण खिलाफ़ पुराणी क़ौमी शाहराह ते धरणो। मुज़ाहिरीन मूजिबि राति देर सां ॿार मीरवा केनाल में किरिया हुआ, इंतज़ामिया का बि मदद न करे रही आहे।
3: लाड़काणे शहर जा खुलियल गटर मौत जो खूह बणिजी विया। मासूम नींगर खुलियल गटर में किरी फौत। शहरनि जे यासीन चौक वारे इलाइक़े में चइनि सालनि जो नींगर साजिद अली पुट अलताफ़ चंड खुलियल गटर में किरी पियो। इलाइक़े वासियुनि गटरनि मां कढी नींगर खे इस्पताल पहुचायो। डॉक्टर्स नींगर साजिद जे फौत थियण जी तसदीक कई।
2: टिड़ी भरिसां वापारी गोलियूं हणी क़तल मक़तूल जे वारसनि जो एहतजाज। बांदी शाख स्टाफ ते हथियारबंदन फायरिंग करे माल जे वापारी हाशिम मुक्ते खे क़तल कयो। वारसनि जो वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाज। संदन चवणो हो त कंहिं सां दुश्मनी नाहे, बिरादरी जे माण्हुनि ई क़तल कयो आहे, जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।
3: खानपुर वेझो मज़दा जे मोटरसाइकिल खे टकर, हादसे सबबि चार मुसाफ़िर फोत, हिकु ज़ख़्मी। फोतुनि में खानचंद पुट रामचंद, हाकिम पुट छेरलोड, संदस पुट रमेश ऐं भाटियो सोनालोड शामिल आहिनि।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे टेक्नीशियन जी ZATO 0320180003।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
7: न अदा।
9: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
8: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
8: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
10: 0301-399-2836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94। अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 03001-2196-851।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: साने जी शफाफ जांच करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। साने की जांच लाए पार्लियामानी कमेटी जोड़ने वाली रिथ भी मंजूर। अपोजिशन मेंबर्स पारा साने की जिम्मेवार खिलाफ सख्त कार्रवाई जो मुतालबो कयो वयो। सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो बेन बारन के मरण का बचाने लाए गड वेणो पवंदो। साने की रिपोर्ट लिखाण या कें के बचाने की नीयत ना है। रिपोर्ट अचन दियो। मुल्क में रोजाना 1300 बार मरी रहा जिन जो हयातियों बचाए सचन थी। निजाम सड़ी ए गरी वो है। वजारतों लाए कब्रन के खराब न कंदी। सालियानों 4 लख बार मरी रहा असा के हल करण पव। इस्लामाबाद की पिम्स में पेश आए इंसाने की जांच जारी। वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद कर वरता। फौती बारन के वारसन का भी बयान वरता वाया। जांच कमेटी वजीर आजम के अज शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ चयो है तो जांच कमेटी अज शाम ताईं शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामूं ईंदी। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई भी थींदी। वजीर आजम की सदारत हेठ FBR में सुधारन बाबत हफ्तेवार इजलास। शहबाज शरीफ पारा टैक्स निजाम में सुधारन वारो कम तय थियल मुद्दत में मुकम्मल करण की हिदायत। टैक्स चोरी स्मगलिंग ए गैर कानूनी कमन में मुलविस मानून खिलाफ कार्रवाई तेज करण जो भी हुकुम। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुधारन जो 3 धुर का ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत कंदे चयो तो मुल्की तरक्की लाए टैक्स वाले निजाम में सुधारा जरूरी आहिन। सुधारन वारो कम बे तय थियल मुद्दत में मुकम्मल कयो वञे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान के दौरे से आयल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शागिर्दन की मुलाकात। पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलों खिते दुनिया में अमुन इस्तेकाम खुशहाली खैथी वठण लाए कयल कोशिशन ते ख्याल की डे वठ। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नौजवान की तालीम हुनर कारोबारी सलाहियतों और हकीकतों से बदल सोच की अहमियत से जोर भर। फील्ड मार्शल चयो तो तेजी से तब्दील थींदड़ गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवान के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के असर के समझ से मुस्बत मकसद किरदार अदा करण घुर्जे।
2: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
0: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: मौजूद आहिन। फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372 0242-46-0100।

किसी थके हुए दिल के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। खुशियाँ बांटे, मोहब्बतें बांटे और अपने खूबसूरत इखलाक से लोगों के दिल जीतते रहे। तो जनाब, आपका अपना इश्फाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ, आपका दिल जीतने के लिए आपके साथ बहुत

0: कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, अगस्त का प्यारा समय है और अगस्त तो आज खत्म होने वाला है जनाब। 29 अगस्त आ चुकी है और 29 के बाद 30 आएगी और शायद पहली आएगी, देखते हैं कि जनाब जो है कितने का महीना है। बिल्कुल जनाब 31 का महीना है, तो 31 का महीना खत्म हो जाएगा आज 29 है, 30-31 तो दो तीन दिन पड़े जनाब अगस्त को खत्म होने में, फिर नया महीना आएगा और नई बातें होंगी उसी हिसाब से जनाब, उसी मौसम के हिसाब से। तो मौसम से मुझे याद आया कि आज 39 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो इस वक्त चल रहा है सखर का, और ये टेम्परेचर जनाब रात के वक्त कम कम कम कम कम और फिर कम होता जाएगा। और शुक्र है कि जनाब अगस्त की रातें बहुत ठंडी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, यानी कि और बिजली जाए भी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल भी ऐसे थे आज भी ऐसे हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि वो बदलने वाले नहीं है, वो अपने टाइम पे लोड शेडिंग ले लेते हैं करते हैं, और इसके बाद जनाब जब दिल उनका चाहता है, जब याद आ जाता है, तब भी लाइट निकाल के ले जाते हैं और हम बेचारे बैठे रहते हैं। क्या करना है अवाम को, अवाम को सिर्फ बर्दाश्त करना है जनाब, क्योंकि हमें यही सबक दिया गया है और पुरखों से हम यही मतलब सबक पे अमल करते आए कि सहो सहो सहो और सहते रहो। अरे जनाब पता नहीं हम कब बड़े होंगे और ये सहना वहना हम छोड़ देंगे, और फिर जब हम आवाज उठाएंगे इन जो है नाजाजियों के खिलाफ और अपने को ना मिलने वाली सहूलतों के खिलाफ, पता नहीं वो दिन कब आएगा। खैर जब आएगा तो फिर देखा जाएगा, शायद हमारी कब्र में हड्डियां भी गल जाएं और तब वो वक्त आएगा, लेकिन फिलहाल हम सोए हुए हैं तो थोड़ा सा जाग जाइए, क्योंकि मेरे साथ आपने रहना है और मैं आपको जगाता रहता हूँ। ये मेरी जो है सबसे बड़ी खामी है कि खूबी है क्या कहें कुछ भी है, क्योंकि आजकल जो जगाता है वो खामियों में शुमार होता है, तो मैं आपको नहीं चाहता कि आप सोए रहे। हम आपके लिए प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा गाना, इस वक्त मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे नहीं मिल रहा वो गाना, पता नहीं कहाँ चला गया लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो मिल जाए और मैं आपके लिए वो गाना प्ले कर दूँ। तो गाना मैं शायद प्ले कर चुका हूँ और आप सुनिए, सुनते रहिए जनाब GFM88 नेटवर्क से, आपका अपना शो है बहुत प्यारा सा। जी जनाब बहुत प्यारा सा शो है आपका आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी। तो आप इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए जनाब अशफाक नियाज़ी का ये प्यारा सा सॉन्ग जो मैं चला रहा हूँ, कहाँ चला गया। खैर जनाब अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ये गाना चला चुका हूँ और आप इस गाने को अब गौर से सुनिएगा, ताकि फिर आप ये मत कहिएगा कि जनाब अशफाक ने गाना अच्छा नहीं चलाया। बहरहाल मुझे कॉल कर सकते हैं, किस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और हम आपके लिए गाना फाइनली प्ले कर चुके हैं। अब जैसा भी गाना है वो आपको सुनना पड़ेगा और मुझसे नाराज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि मैं आपकी पसंद के गाने भी चलाने लगा हूं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा।
1: मुझे लगा तू हमेशा की तरह डिच कर गया।
2: ये हो ही नहीं सकता था।
3: लो तुम्हारा एक्स भी आ गया।

जी जनाब वेलकम बैक, मेरा पिया घर आया हो राम जी। क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाजों की नजर किया और यकीनी तौर पर आप में थोड़ी बहुत एनर्जी तो बूस्ट हुई होगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जनाब जब इतना जबरदस्त म्यूजिक चलता है तो ऑफ कोर्स एनर्जी का डबल होना तो बनता है। 5:21 टाइम इज राइट नाउ। सखर की ये जबरदस्त सी हल्की फुल्की सी गर्मा गर्मी फिलहाल, और आपका अपना अशफाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। सखर टू कश्मोर, घोट की लाड़काना जनाब, और हैदराबाद मिठी मातेली दादू, पता नहीं कहाँ कहाँ हम सुने जा रहे हैं। और जनाब जहां जहां तक सुने जा रहे हैं वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि जनाब आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर। लेते हैं जनाब शो की पहली कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो जाता है जब मैं कॉल लेता हूँ तो जनाब मेरे साथ लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर पंगा हो जाता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चलें जनाब नहीं आ रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। हेलो जी जनाब, कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बार बार होता है तो बुरा लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एनीवे अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हमें आवाज शवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं और इसी तरह आपके साथ रहने वाले हैं शाम के 7 बजे तक, और हम आपको सुनवा देंगे एक और गाना जनाब, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारे चिटचैट करना चाहते हैं, आपको एंजॉय करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनाब आप हमारे साथ रहें तो बहुत मजे में रहें ना, और जब मजे में नहीं कोई वो बनता, मजे का कोई सीन नहीं बनता, तो फिर हम सीन बनाना जानते हैं, तो चलिए जनाब हम सीन बनाते हैं आपके मजे के लिए। आपके सुनाते बहुत प्यारा सा गाना इस वक्त मेरे पास मौजूद है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव स्लोली, क्योंकि इस वक्त मैं प्ले करने वाला हूं कहानी सुनो जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था। इस गाने को सुनिएगा जनाब, क्योंकि मैं प्ले कर जाऊंगा आपके लिए बहुत सारा जबरदस्त गाना, और अगर आज आपके किसी भी दोस्त की बर्थडे है, किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे जनाब फेसबुक पे मैसेजेस कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी विशेस को आपके प्यारों तक पहुंचा दूंगा। डोंट फॉरगेट ऑल

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन। अब लेते हैं शो की एक और कॉल। मुझे प्यार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हो? जमाल साहब, क्या हाल चाल है? ताजा ठीक ठाक है हो? मजे में आए हो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मुझे यू बुझायो ताजे जो नहीं ताजो किए गुजरे हो आई जेको आहे गर्मा गर्मी की आहे शिकारपुर में वधिया आहे घट थिया छा थियो आ
1: गर्मा गर्मी तमाम घणी राजो कुछ माशाल्लाह नॉर्मल
0: आ। अच्छा, नॉर्मल मौसम हर जगह ते मौजूद है। मामा जमालदीन भयो साहब, यो बुझायो ताज गानो केडो बुझन चाहो था? मुमताज लाशारी साहब, बिल्कुल तांजे लाए प्ले कयूं था। ऐं कंहिं जे नाले ते करण चाहियो?
1: हा, इहो इम्तिहाज़ लाइ भयो, निमत लाइ भयो, जेका खां मस्तु मीराणी
0: हमारे साथ है जनाब जमालदीन भयो साहब फ्रॉम शिकारपुर। और आप भी अगर कहीं पर भी हमारी आवाज समाप्त कर रहे हैं तो जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, खैर सा सबनी सागर? जुहेब कटबर लाड़काना से। कैसे हैं जुहेब भाई? ठीक ठाक मजे में हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाए कैसे हैं?
0: फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप लाड़काना में?
2: सर बस लाड़काना में रोजगार करता हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, की हले तो ताजो रोजगार?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर,
0: फर्स्ट क्लास हले तो
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। पढ़ाई वढ़ाई कंदा आयो सिर्फ कम कार कंदा आयो?
2: पढ़ाई भी करता
0: हूँ। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त यार, असांखे दुआ में हमेशा याद रखना क्यों। अच्छा जुहेब भाई, ये तो बुधायो त मुमताज लाशारी तो हलायण चाहिया अदे जमाल दीन भयो जी फरमाइश थी तो केड़े कें के तमा डेडिकेट कंदा हो?
2: मैं अपने दोस्त को करूंगा, आसिफ चाचड़ को।
0: जी जी।
2: और जैनल अब्दीन मुसैब रहमान को।
0: बस
2: बस
0: चलें, ठीक है। थैंक यू जुहेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लड़काना वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ जनाब, शिकारपुर वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ और बहुत से सिटीज अभी रहते हैं जनाब। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अब क्या होगा?
0: अब ब्रेक का टाइम।
2: तो फिर क्या होगा?
0: तो फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा।
2: अभी 529 हो गया।
0: नहीं, मुझे वैसे ये बताओ तुम ब्रेक के टाइम क्यों आते हो ये बताओ
2: यार। दरअसल मैं कह रहा हूँ मैं आपके ब्रेक फेल करूँ लेकिन आपके टाइट हो जाते हैं।
0: मेरे ब्रेक फेल करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ।
2: उसके अपने ही ब्रेक फेल हो जाते
0: हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सुनाओ इरफान भाई, कैसे मिजाज है आपकी, आपकी खबड़ी संगत और लाल संगत कैसे जा रही है?
2: मुझे कहते हैं इरफान अली, मेरी कास्ट से वो और मेरी संगत गुलाबी और मेरी यूसी खबड़ी बेट। आगे बताऊँ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताएं बताएं।
2: मेरा तहसील साले पर, जिला सक्कर, सूबा सिंध, मुल्क पाकिस्तान, खंड एशिया, दुनिया पानी, आगे जाना है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और आगे कहाँ जाना है ये बताओ?
2: पता है आपको?
0: नहीं।
2: अगर किसी भी जान में लोग सुन रहे होंगे ना,
0: हाँ,
2: उसने मेरी पूरी डेटा निकाल दी, अब उसको मेरी एड्रेस याद हो गई क्योंकि मैंने दुनिया पानी का भी जिक्र कर दिया।
0: दुनिया पानी का भी जिक्र कर दिया, वाकई ये बात तो है यार कि दुनिया पानी का जिक्र आपने कर दिया। अच्छा ये बताओ कि अब जो है इंतजार करोगे ब्रेक के बाद?
2: यार करना पड़ेगा,
0: करना पड़ेगा।
2: आज के बाद ना मैं एक चैनल लॉन्च करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंतजार न्यूज।
0: इंतजार न्यूज,
2: कभी भी न्यूज नहीं चलेगी, सिर्फ
0: इश्तेहार चलेगी। चलो थोड़ा सा वेट करो, टाइम चेक का टाइम हो जाता है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ओके ओके ओके।
3: इट्स 5:30। तो आज खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीय जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीय जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: आगे उठाएं, दो कदम पीछे चल जाए,
1: सही बात है, सही बात है, वाकई वाकई वाकई। चलो जनाब डेडिकेशन,
0: सिस्टर मिसेस अली और फौजिया फरजाना, सिस्टर दुआ, और उसके बाद रायत सुमरो, मंताज सुमरो, हाफिज गुलाम अहमद सांबल, हुसैन बख्श, नजीर मंगरो, बचन चमानी, जो भी दोस्त सुन रहे हैं सबको इरफान अली सेबो की तरफ से बहुत सारा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू। हमारे साथ जनाब इरफान अली थे वो खबड़ी भिट से, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 हमारा नंबर है, और जनाब हमारे साथ शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, मुझे सुना के रसा सबनी सा गद जवार बचल मोहम्मद शंबाणी साहब, केड़ा हाल चाल आई तांजा नारो की आहे
2: नारो टिकल
1: सफा मबुद हुआ था नारे में हारे मगरमच्छ भी निकता है मां बुद्धो आमा फोटो डिठाइन अलाए ए आई ते ठेले न लाइक छा मना नारे जी का वाह वाह आन उनन में वागु था गुमन
2: थी सके दो वाह
1: हां तो पे थोड़ो ध्यान कदा कियो यार बारन जो पांजो
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: हां जवाब साहब ये बतायो त तमा इन फ्यूचर तमा छा कंदा हो केरी ता सोच रखिया त मा हने छा केड़ो काम कदम केरी जॉब कदम अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भली गाल है तां जी रोजी रोटी में बरकत भेजे यू बुधायो मामा जमाल जी फरमाई से मां मुमताज लाशारी तो प्ले क्या कहन जे नाले त करना चाहो
2: फिर उन
1: जी जी चलो ठीक है अले वराय लाशारी साहब के भी सलाम दीजो थैंक यू जवार बचर शाह साहब जी जनाब हम प्ले कर चुके मामा जमाल भाइयों की फरमाइश पर ये गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए

0: इहे नाज प्यारा प्यारा तुझा मुखे बनी विया।
1: अच्छा
0: दोस्त बुझन जा
1: सही सही सही बुधायो बुधायो
0: अजीत जलवार है अजीत सोलंकी है कुर्बान अली खास के लिए गुलाम रसिया है रजा के को हाल पुत्र और झुलूरी में हुआ यो बुझे जो
1: ओके
0: अरे समन मेरा रे हाल तो वाला आती है
1: बिल्कुल मुगवे समन मेरा ली जो यो गानो पे वा तुंजा या नाज प्यारा प्यारा मुख तुंजा मुखे बढ़िया
0: मेहरबानी
1: का मेहरबानी सर मेहरबानी थैंक यू सो मच खालिक भाई। All right guys, हमारे साथ खालिक भाई फ्रॉम जलूरी और जलूरी के बाद अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन आ चुके हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी जनाब केरे सा सबरी सा गदो गदो साले पटका केरा सा सबनी सा गदो इमाम दिनो भमरो इमाम दिनो भमरो साहब के हाल चाल है तांजा फर्स्ट क्लास
0: भाई
1: साले पटवारा सब किए हैं मौजन में आए या ना
0: मस्त मस्त
1: माशाल्लाह माशाल्लाह ये मस्त रहो सर मस्त रहो हर वक्त रहो ये बुधायो असारे शोता के लगे थो अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ये बुधायो तो साले पट में आजकल केड़ो मौसम आहे माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त ये बुधायो शमन जो गानो बुधाया तो अदे जी फरमाइश थे खालिक भाजी कहीं जन था करना चाहे सही सही ओके जी जी जी जी हाय थैंक यू सो मच ओके मामदीन भमरो साहब पांचो खास ख्याल रखियो जी जनाब हमारे साथ मामदीन भमरो साहब आप भी हाथ पे हाथ रखे मत बैठे अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जनाब किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं कोई भी गाना और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03000113488। लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद के रसा सबनी सा गद लाशारी भाग के हाल चाल है न फर्स्ट क्लास मजे में छाता क्यों आई छा करना चाहो था जिंदगी में
2: जमीन दिया पाजी कहीं ना हो
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तांजे रोजी रिज़्क में बरकत भेजे यो बुधायो असा जो प्रोग्राम तांके के लगंदो आप
2: सही बेहतरीन लगंदो आप हेलो
1: हां माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच यो बुधायो ता मके हाने कॉल किया या पेरी भी तांजी कॉल लगंदी रहंदी आप
2: वालेकुम
1: अस्सलाम लाशारी भाई खास ख्याल रखो थैंक यू सो मच जी जनाब हमारे साथ लाशारी भाई इनको प्ले करके सुनवाते हैं जनाब खालिक भाई की फरमाइश पे या नाज प्यारा प्यारा इस गाने को सुनिए हमारे साथ हैं इस वक्त इनाम अली लाशारी फ्रॉम बच्चल शामियानी तो इनाम भाई तांके असा जो सलाम आई तमा के यो गानो डेडिकेट था क्यों इनाम जमाली साहब तमा यो गानो

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 03201800003।

0: जो थींदो आहे, या वरी जेको अल्कोहल या आफ़ीम घणी इस्तेमालु कंदा आहिनि उन्हनि खे बि तिरीअ जो मसइलो थी वेंदो आहे, या जिन खे पहिरियां ऑलरेडी लिवर सां कनेक्टेड के बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, हेपेटाइटिस वग़ैरह, या फैटी लिवर हूंदो आहे, या जोड़नि जी का तकलीफ़ हूंदी आहे, या कैंसर जा के चांसिस हूंदा आहिनि, उन्हनि जे करे बि जेको आहे सो तिरी वधी वेंदी आहे। सो हीअ हिकिड़ी नंढी मालूमात तिरी जे हवाले सां ई, लेकिन हिते ज़रूरु प्रोग्राम करण जो असुलु मक़सदु बि इहो ई आहे त असां वटि बि खोड़ सारा पेशंट तिरी वधण जा ईंदा आहिनि अलहमदिल्ला, उनखे जॾहिं बि असां डाइग्नोस कंदा आहियूं ऐं दवा ॾींदा आहियूं त उहो माशाल्लाह जेको आहे सो उहो बिल्कुलु ठीकु थी वेंदा आहिनि। सो जॾहिं बि कंहिं बि असांजे भाउ खे अहिड़ो को प्रॉब्लम थिए त जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक तव्हांजे शहर मैरापुर में मौजूदु आहे, उते इहो इलाज मौजूदु आहे बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे। सो ज़रूरु जेको आहे सो ॾेखारण लाइ वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम हे से अच्छी ॻाल्हि है जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301-91-896 लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-91-896। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। प्रोग्राम में कॉल्स बि शामिल कंदा हलंदासीं। रेडियो सेट खे बंदि कयो, मुंहिंजा साईं रेडियो सेट खे बंदि कयो। दुआ अलहमदुल्ला, केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो दादा? हा जी, न्यू मंजट खां केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो? जी जी, ख़ुश आमदी चऊं तव्हांखे पंहिंजे भाउ खे। छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां प्रोग्राम में मुंहिंजा भाउ?
2: जी, मादे जी ख़राबी ॾाढी आहे, पेट में सूर पियो। इहो डॉक्टर साहिबु चवंदा इहो छाजे करे पियो थो?
1: खाइण पीअण जे हवाले सां उमिरि घणी आहे तव्हांजी? अच्छा, माना यंग आहियो, तॾहिं बि मादो ख़राब थी वियो आहे। मिर्च वग़ैरह घणा इस्तेमालु था कयो छा? अच्छा, साई भाॼी इस्तेमालु कंदा आहियो। ॿुधो, एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर, डॉक्टर साहिबु
0: जिसे बिल्कुलु उन जा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि। हिकु त गर्मी जो मौसमु आहे, कंहिंखे को प्रॉब्लम गर्मी जो पुराणो असरु हूंदो आहे, उनजे करे बि सूरु पवंदो आहे, या चांहि जो इस्तेमालु को घणो कंदो आहे, या मुर्गनि गिज़ाऊं या अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जॾहिं केरु इस्तेमालु कंदो आहे तंहिंजे करे तकलीफ़ थींदी आहे। बहरहाल मादे जी तकलीफ़ या जिगर जी तकलीफ़ जे हवाले सां बि इहे प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि। सो अधु खे चवंदासीं, हिकु त जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची पाणी में काढ़े राति जो ऐं सुबुह जो छाणे उहो पाणी पीअनि, इनशा ताला काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो। वरना होम्योपैथिक में मुंहिंजी बहितरीन ट्रीटमेंट आहे, रूबरू ॾेखारे सघंदा। वॾी
1: महिरबानी। सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाबशाह, डॉक्टर साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर, हिकु मुल्की सतह जो डॉक्टर आहे जेको असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। 0301-91-896 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे। डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कनि था। इन खां अलावा गले जा गुदो वुदो हुजनि या नक जी हॾी वधियल हुजे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संधनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निचो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जी खंघि, टीबी, मादे जी जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधी वञणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हर जुमे छंछरु, आचर ऐं यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं, हर जुमे, छंछरु ऐं आचर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं बग़ैर यानी चेकअप फीस जेका हूंदी आहे उहा डॉक्टर साहिब जी बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, मुफ़्त हूंदी आहे। डॉक्टर साहिब जी चेकअप फीस बिल्कुलु मुफ़्त आहे। जुमे, छंछरु ऐं आचार ते अवां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब खे ॾेखारे सघो था। हफ़्ते जा मुकमिल ॾींहं सवाइ अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, मोकल जो ॾींहुं हूंदो आहे। बाक़ी हफ़्ते जा 6 ॾींहं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक खुलियल आहे, उन्हनि में 3 ॾींहं जेका आहे चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री आहे, मुफ़्त आहे। जिन

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शफाफ जांच करण जो मुतालबो करे छो सेनेट ए कौमी असेंबली में खास कमेटी ठाण वो ठहराव मंसूर। अपोजिशन पारा साने की जांच ला जोड़ल हुकूमती कमेटी के रद्द करे छो। साने की जांच ला अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करण जो भी मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो पिम्स साने में मुलविस को भी शख्स न बचंदो, सभी ऑफिसरन के लाइन हाजिर किया वेंदो, कोई को भी MNA या सेनेटर फोन न करे। अपोजिशन रोड मैप दे तारीखन ए कमेटियन ता मामले के महदूद न कयो वने, कहीं बे साने खां बचण लाए मामले जो हल कढ़ियो वेंदो। इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी। वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद करे वरता। फौती बारन के वारसन खां भी बयान वरता वया। जांच कमेटी वजीर आजम के अज शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ चयो आहे त जांच कमेटी अज शाम ताईं शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 7 ॾींहनि में साम्हूं ईंदी। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। ऐं सिंध असेंबली नवनि सूबनि जे क़याम तोड़े नवनि यूनिट्स जे हवाले सां थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह जी सदारत हेठि थियो। पीपुल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवनि सूबनि बाबति थींदड़ बहस जे हवाले सां रिथ ऐवान में पेश कई, जेका मंज़ूर कई वई। स्पीकर अवेस कादिर शाह जो चवणु हो त रिथ ते सूमर वारे ॾींहुं 2 कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिट्स जे हवाले सां बहस थी रहियो आहे, जंहिंमें सिंध जी सरहदुनि सां बि छेड़छाड़ वारा नुक़्ता शामिल आहिनि। मामूल जी कार्रवाई मुअतल करे हिन मामले ते बहस कयो वञे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ऑफिसरन के लाइन हाजिर कयो वेंदो, पोइ को बि एम एन ए या सेनेटर फोन न करे, अपोजिशन रोडमेप ॾे तारीख़नि ऐं कमेटियुनि तां मामले खे महदूद न कयो वञे, कंहिं ॿिए साने खां बचण लाइ मामले जो हल कढियो वेंदो। इस्लामाबाद जे पिम्स में पेश आयल साने जी जांच जारी, वज़ीर आज़म पारां जोड़ियल कमेटी पिम्स जे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत ॿियनि जा बयान कलमबंद करे वरिता, फौतिन खां बि बयान वरिता विया। जांच कमेटी वज़ीर आज़म खे अॼु शुरूआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त जांच कमेटी अॼु शाम ताईं शुरूआती जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश कंदी। तफ़सीली रिपोर्ट 7 ॾींहनि में साम्हूं ईंदी, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बि थींदी।
2: At the stated units in Pakistan, inputs and suggestions which may have the effect of also the existing

0: भी है जनता
1: के सर आपने रूल्स लेकिन फिर भी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स वेदर द मेंबर हैज लीव ऑफ द असेंबली टू मेक द एजेंडम मोशन
2: सिंध असेंबली नमन सूबन जी क्याम थोड़े नमन हाले सा थींदड़ गालन ते बहस लाए रथ मंजूर करे वरती सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह जी सदारत हेठ थियो पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसन में नमन सूबन बाबत थींदड़ बहस जे हवाले सा रथ ऐवान मंजूर कई वई स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त रथ ते सू कलाक बहस कयो वेंदो रथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नमन सूबन ऐं यूनिट्स जे हवाले सां बहस थी रहियो आहे जंहिंमें सिंध जी सरहदनि सां बि छेड़छाड़ वारा नुक़्ता शामिल आहिनि मामूल जी कार्रवाई मुअत्तल करे हिन मामले ते बहस कयो वञे।

सुधारण वारो कम बे तय थियल मुद्दत में मुकम्मल कयो वञे। रूस कंहिं बि नेटो मेंबर ते हमिलो न कंदो। सीआईए सरबराह जी मॉस्को जे दौरे जो मक़सद बि ख़ासि पैगाम मोकिलण न हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जॉन रेडक्लिफ 6 महीने या साल में पंहिंजे रूसी हमनसब सां मुलाक़ात कंदो आहे। संदसि मॉस्को वारे दौरे जो मक़सद ख़ासि पैगाम पहुचाइण न हो। अबना हुरमस बाबति रूस जो रवियो मुसबत हो। ईरान वटि फ़ौजियुनि खे पघार ॾियण जेतिरा बि पैसा न आहिनि रहिया। अबना हुरमस खे बि बारूदी सुरंगनि खां साफ़ करे छॾियो आहे। ईरान ऐं ओमान विच में आबनाह हुरमस में वक़्ती रस्तो खोलण ते इतफ़ाक थी वियो। राहदारीअ जो हिकिड़ो हिसो ईरानी ऐं ॿियो हिसो ओमानी पाणनि मां हूंदो। ॿई मुल्क गॾियल तौर ते जहाज़नि जे अच वञ जो इंतज़ाम ॾिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई चयो त आबनाह हुरमस जे लंघ जो वाज़े तौर ते तइन करे छॾियो आहे। अमरीका ईरानी शर्त मञिया त आबनाह हुरमस ॿीहर मुकमल तौर ते खुली वेंदो। पर ॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो त ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ अमरीका खे एतमाद बहाल करणो पवंदो। भारत हिकु तरफ़ो सिंतास मुआदो ख़त्मु नथो करे सघे। मुआदे ते भारत जे हक़ल तरफ़ी हिकु तरफ़ी क़दमनि खे जंगी ॾोह सम्झो वेंदो। लंडन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तानी मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। देवाल पिणे जो ख़दशो मुकमल ख़त्मु थी चुको। पाकिस्तान पुरमुन ऐं मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहे थो। अफ़गानिस्तान पंहिंजी सरज़मीन जो पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु रोके।

0: नेपाल में आयल बोड़ के नतीजे में फौतन जो अंग वधी 579 थी वयो 500 समेत 900 जणा बदस्तूर गुम 900 जणन के बचाण की दावा नेपाली हुकूमत मौज बोड़ सबब तबाह थियल घरन जो मलबो हटाने जो सिलसिलो जारी है चीनी सरकारी मीडिया मौजिब तिब्बत में 555 सियाहन के महफूज हंध मुंतकिल कयो वयो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुम्मे, छंछर, आचर।

0: वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-850
1: छो परेशान आई
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: चलोगे हमारे साथ मस्ती के सफर में जिंगल टून्स के साथ?
1: कभी रेलगाड़ी में तो कभी
2: नानी के यहाँ,
0: तो कभी शेर और चूहे के साथ जंगल में, और कभी मामा के साथ मस्ती करने।
1: आइसक्रीम खाएंगे,
2: नंदी बैल से सवाल पूछेंगे।
0: तो चलो फिर हमारे साथ जिंगल टून्स की धूम चली रेलगाड़ी।
3: आपको खुश करने वाली कहानियाँ और कार्टून्स आज ही ले आइए आपकी मनपसंद जिंगल टून्स।

0: हाउस की कमेटी बननी चाहिए जो ये इन्वेस्टिगेट करे। मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है। आप जरा फेहरिस्त देख लें, फेहरिस्त निकाल के देख लें कौन किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें। सब एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे की तहकीक कर रहे हैं। दैट्स नॉट ऑन, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन। और ये वही गोल गोल वाला मामला नहीं होना चाहिए।
1: सब बच्चों की शहादत हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम मायसेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक कमेटी बना ले एमएनएज और सेनेट के ऊपर।
2: पार्लियामेंट पिमसाने की शफाफ जांच करने जो मुतालबो कर सेनेट ए कौमी असेंबली में खास कमेटी ठहण वा ठहराव मंजूर। अपोजिशन पारा साने की जांच लाए जोड़ियल हुकूमती कमेटी के रद्द कर साने की जांच लाए अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करने जो मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल तो पिमसाने में मुलविस को भी शख्स न बचंद सभी ऑफिसर के लाइन हाजिर किया वो को भी एमएनए या सेनेटर फोन न करें। अपोजिशन रोड मैप दे तारीखन ए कमेटी त मामले के महदूद न कयो वने कें बे साने का बचण लाए मामले जो हल कठो विंदो। इस्लामाबाद जी पिम्स में पेश आयल साने जी जांच जारी। वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद करे वरता। फौती बारन जे वारसन का भी बयान वरता वया। जांच कमेटी वजीर आजम के अज शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वाले वजीर आजम नजीर तार चयो है जांच कमेटी अज शाम ताई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामू ईंदी। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई भी थी।
3: Units in Pakistan, including proposals and suggestions which may have the effect of also the existing territorial limits of the province of Sindh. The matters of public importance and must be discussed on the floor of the house. Business of the assembly may be adjourned to take this.
4: Minister, you have 256 ke tahat rules relax karwa diye, lekin phir bhi Minister for Law and Parliamentary Affairs, whether the member has leave of the assembly to make the adjournment motion.
2: सिंध असेंबली नवन सूबन की क्याम तोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थींदड़ गालन ते बहस लाए रिथ मंजूर करे वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थियो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थींदड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जका मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो तो रिथ ते सूमर वाले डी ब कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे तो पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रहयो आहे जैमें सिंध के सरहदन से भी छेड़छाड़ वारा नुक्ता शामिल आहिन। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करे इन मामले ते बहस कयो वञे।
5: जी एडा मंसूबा पहिरों भी माज़ी में काफ़ी आया उनके सिंध जी अवाम रद्द कयो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध जी अवाम सां आहे
6: और हालिया दिनों में करारदाद बड़ी तफ़सील से पास हो चुकी है।
7: मैं समझता हूँ कि असेंबली के इजलास शुरू होने से पहले ही पीपल्स पार्टी के अफराद जो हैं, जो मेंबर्स हैं, हमारे अहदेदारान हैं, सूबे के इशू पर वाज़ह तौर पर अपने मौकफ का इजहार वो करते रहे हैं, करते रहेंगे।
8: बात ये है कि आपसे दो अस्पताल तो संभाल नहीं रहे, सूबा क्या संभाल।
9: सूबन के लिमिट्स को ऑल्टर करने जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, सिंध की विरासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कबूल कोने। सिंध न करे विराई या न विराई भी न विराइन छरी जी ये कहने ना बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े
10: इंसान मानो ना इंसान अवामा है इंसान जब वो करें के चंद एमकेएम या शख्स असेंबली का मेंबर जान ओकी मेंबर
11: मैं एमकेएम के चंद सब्र कहो केक कोने जो काटे वराय छरी दा सिंध
12: चार को संभाल नहीं सकते 36 की तरफ जा रहे ये मुल्क पे रैंप करे ये साजिश है कुछ लोगों के
13: 10 सूबे बनेंगे या 15 सूबे बनेंगे लोग तो यही होंगे ना कोई आसमान से तुम्हारा रोजुला फरिश्ते तो ही आएंगे।
14: तालबा हमारा हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आपको छोटे यूनिट्स पे जाना होगा फेस्टो का भी पार्ट है।
2: सिंध असेंबली जा मेंबर सूमर वाले डी नवन सूबन के मामले ते ऐवान में बहस लाए तैयार। पीपुल्स पार्टी जी एमक्यूएम के सिंध जे विरांगे वारो ख्वाब न दिसण जी सलाह। सूबाई वजीरन एमपीएस चयो तो सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ एक न पर केतरा ही भेरा ठहराव मंजूर थी चुका आहिन। सिंध असेंबली एक भेरो बीहर ठहराव मंजूर करे वठंदी।
15: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
16: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।